संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने हैं। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हां करो। अठ घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई। जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा कहन लगे नहीं जो वचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा घिओ दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया। कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे। अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखदियां वेखदियां बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया। कहन लगा तू मजदूर नहीं है, ऐसा नाम रतन निर्मोलक उन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने तो संगत वालों

दोनों द्वारे विच सोने में लपेटी हाथ चौबन ही फड़ी रही पेशी दर पेशी अते मिसल हजार रही खेल गयो खेली

लंघ रिया सां ते इस खोपड़ी ने आवाज दिती है ओए निघरिया तू घर आ जा मर के भी तो मेरे पास आना है ते हुणे ही आ जा एक थां ते बैठ जा क्यों थां थां ते भटकदा फिरना थां थां ते रुलदा फिरना इक्के थां ते बैठ के रब दी बंदगी कर पता नहीं लगता।

दिल मेरे ते ना आवे, मैनू शुभ उपदेश दियो, कोई अपनी कलाम दियो जिस नाल मेरा लोक भी ते परलोक भी शौर जावे, क्योंकि हर वेले मेरा अंदर जलदा रहिंदा है। जो भी पुरुष कोई जुल्मी होंदा है, दुख देन वाला होंदा है, वो कदे सुख दा साह नहीं लै सकदा।

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ ले महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेर नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी।

दे संग न चालस तेरे तना। ए जीव, ए तन, ए माया, दौलत तेरे नाल नहीं जान, एने तेरा साथ नहीं देना। सह पंचम पातशाह फरमान कर दे ने संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मन। ए मूर्ख मन, क्यों तू माया दे विच उरजिया वे, क्यों मोह माया दे जंजाल विच पै गए, अपनी सलीयत नु भुली बैठा है, माया ने ते तेरे नाल ही नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, लेंदा पद दुआए तू माया करे अकत। क्यों बदशीसा लै बद दुआ लै के माया नु अकत्र कर रहे, माया कठी ना कर। ए ठीक है के माया तो बगैर गुजारा नहीं, निर्दन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे कितना तरे, निर्दन नु कोई आदर भी नहीं देंदा, माया तो बिना गुजारा नहीं। पर सैम आख दे ने जीव माया भी ओनी होवे जो तेनू परमेश्वर दा ना ना भुला दे, तेनू वाहिगुरु भुल ना जावे। माया भी ओनी कोई चाहिए गुजरायन जोगी। सैम फरमान कर दे ने लैंदा बद दुआए तू माया करे अकत। जिस माया नु तू अकत्र कर रहे उस माया तेरे नाल नहीं जाना। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। इस जुग में सोबा नाम की, पर इंसान दे मन अंदर गलत फहमी पैदा होगी, कहिंदा है माया दे नाल ही सब कुछ है। जी माया ते जहान है, जी माया ते साख संबंधी ने, जी माया ते रिश्तेदार ने, जी माया ने ते तिया पुत्र ने, नहीं ते माया तो बिना कौन किसे नु कुछ समझदा है, माया तो बिना कदर ही नहीं। पर सैं फुरमान कर देने जीव ना इस

माया दी शोभा आवनी ते जानी है पर नाम रूपी शोभा सदा ही थिर है। नाम रेओ साधु रेओ जान तो बाद भी दुनिया याद कर दी जेड़ा नाम जप के जांदा है सिमरन करके जांदा है। भगता ने केड़ी कोई माया कठी की थी? एक माया उना दे पास सी जो आज असी उन्होंने नमस्कारा कर रहे हैं। लोका भावे नीवी जाति वाला कह दिता है पर असी नहीं कदी कह सकते रविदास जी आप जरा पढ़ा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करनी कहने कदी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी माया उन्होंने पास सी ऐसा धन उन्होंने कोल सी केड़ा ओ नाम रूपी तन। जीव तू ही अकत्र कर तू ही ओ तन इकट्ठा कर जो तेरे जान तो बाद भी तेरा कोई नाम लवे कि चंगा पुरसी अमृत वेले उठ के नाम जपदा सी सिमरन करदा सी एही तन तेरे नाल जाना ए तन तेरे नाल नहीं जाना। साहिबां दा उपदेश है मिलके पढ़ी संग।

सतगुरु फरमाया कारी ए करो। सतगुरु फिर फरमाता है भी आ कार तैं करनी है, आ कार तैं करनी है, आ करनी तैं करनी है। तो वो करनी दे विच जदों असी गुरु धारण करते हैं, अलग अलग धर्मां दा अलग अलग गुरुआं दा आपो अपना ढंग है अपने शिष्य नूं स्वीकार करन दा। सिख मार्ग दे विच सतगुरु गुरु नानक साहिब जी महाराज दे घर दे विच, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दी ही जोत, गुरु नानक देव जी दी जोत, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज अते इसे तरह दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के स्वरूप दे विच ओ जोत जो है ओ जोत ओही रही, शरीर बदलते रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे विच उस जामे दे विच गुरु नानक ने अपनी यह मर्यादा कायम कर दिती कि जो साडा शिष्य बनना चाहेगा, सातों गुरुमंत्र लेना चाहेगा, साड़ी सिखी धारण करनी जो चाहेगा, उस दे वास्ते आ शर्तां हैं। अमृत पान कीते तो बिना ओ गुरु का सिख नहीं बन सकता, उसनू अमृत छकना पड़ेगा। और जे कोई आखे कि मैं ये नहीं करना चाहता, इसकी की लोड़ है, इसका मतलब ओ ना अपनी होमे ते ना अपना मन गुरु नूं देण नूं तैयार है, क्योंकि वह पहले दिन तो ही उस सवाल शुरू कर लेंदा है। जिसने सवाल करता गुरु महाराज उसनूं स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इसे ही चीज नूं तोड़ना है। इस झूठी हस्ती की मनमर्जी नूं, इस झूठी हस्ती के ज्ञान नूं ही उन्होंने तोड़ना है। उन्होंने फुल अथॉरिटी है कि साडे तन नाल जो मर्जी कर दें, जिस तरह का मर्जी बना दें, अते साडे मन दे टोटली अगेंस्ट चले जान, साडी जो बिलीफ सिस्टम है, ज्ञान है, जो असी ठीक समझते हाँ, उस दे टोटली ऑपोजिट जा सकते हैं। उसकी उत्थे कोई बुक्कत ही नहीं रह जाती। जे कोई सिख आखे महाराज इस चीज की की लोड़ है, इहदा मतलब कि वह अपना ज्ञान उत्थे फिर दिखा रहा है, पर उसके ज्ञान की तो उत्थे कोई बुकत ही नहीं। उत्थे तो पहले ही यह तख्ती लगी है, जीवत मरे मरे फुन जीवे ता मुखंतर पाए, नानक सतगुर तद ही पाए जब विचों आप गवाए, अपना आप गवा दे। अते किसे भी धर्म दे विच जदों शिष्य गुरु धारण करता है, उसका एक ही ढंग है कि शिष्य अपने आप नूं सरेंडर कर दिंदा है। की डिसिपलिन है वह गुरु की अपनी मर्जी, वह गुरु जानता है। उस नूं कई लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिकली इस चीज का आ फायदा, इस चीज का आ फायदा, इस चीज का आ फायदा। पर जो सिख है वो सिर्फ एक ही गल देखता है कि एक गुरु का वचन है, बस उसनु ओ उस चाहे फायदा है या नहीं है, वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है, वो रैशनल है या इरैशनल है, पर वो गुरु का वचन है। बस सिख दे वास्ते इतना ही है कि वो गुरु दे वचन नू उस दी अथॉरिटी नू चैलेंज नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। तो साडे धर्म दे विच गुरु वाले असी उस दिन बनते हाँ, गुरमंत्र सानू उस दिन मिलता है जिस दिन असी वो जो सैरेमनी है पंज प्यारियां तो अमृत छक के ते पंज प्यारियां तो गुरु मंत्र दी दात वाहिगुरु शब्द जो है वह फॉर्मली उन्हां तो सुनते हैं कि अज तो तुहाडा मंत्र जो है वह वाहिगुरु शब्द है। वो सुनन तो बाद साडी आत्मा दे उत्ते मोहर लग गई, सानू अधिकार मिल गया उस शब्द दे जाप करन दा। फिर उस सिख ने अपनी जिंदगी दे विच जो डिसिपलिन उसनू दस्या गया है, उस डिसिपलिन नू उसने कमाना है, उस डिसिपलिन दे विच उसने रहना है, अते नाल दी नाल गुरबाणी दे विचों जो उसनू उपदेश मिली जाता है उसनू ओ कमाई जाना है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अवस्था जो है वह उच्ची उठती जाएगी।

कान्हा राग तो बाद कल्याण राग दा आना सुभाविक है। रागमाला विच भी गौरा और कांधरा कल्याणा दी तरतीब रखी है। कल्याण खुशी पैदा करता है, आत्मा आनंद विचाई प्रभात दी लो दी उड़ीक करती है। प्रभु दी याद ने सिमरन ने दृढ़ करा दिता कि माया दे सारे जतन किसे काम नहीं। आनंद विचाई आत्मा लालन की शोभा सुन सुन खीवी हुंदी है। शब्द दे सिमरन दी बरकत नाल सदा सद जागत रहिंदी है आत्मा। अते कल्याण सावधान मुद्रा विच ही गाया जांदा है। इस राग विच गुरु रामदास जी अते गुरु अर्जन देव जी ने बाणी उचारी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे राग भेद अनुसार कल्याण राग दे अधीन राग कल्याण भुपाली भी आउंदा है। कल्याण अते कल्याण भुपाली दोनों भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। कल्याण राग विच गुरु रामदास जी दे 6 शब्द हैं अते कल्याण भुपाली विच केवल 1 शब्द है। इस राग विच तीबर मध्यम अते बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसका बाजी सुर गंधार अते समाधी निषाद है। गायन समा है रात का प्रथम पहर। राग कल्याण विच सरवण करो 2 शब्दों का कीर्तन। पहला शब्द है प्रभ मोहे कब गल लावह गे प्रोफेसर करतार सिंह जी। दूजा शब्द गायन कर रहे हैं भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। शब्द है गुण नाद तुन आनंद वेद। सरवण करो प्रोफेसर करतार सिंह जी होरां पासों प्रभ मोहे कब गल लावह गे।

कर्मी सहज नाम बजाए बिन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए कित संजम तोता जाए मन तो